ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे ले तो हाडे ले है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: Dosto sashika namaskar mahaan
4: khada paadun bansa Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television, Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet and Realtor Harp Garimal present The Sense.

0: This September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देखी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए पाँच बाहपा, वे आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: अगर तुसी घर दे मालक हो तो ध्यान नाल सुनो, जे थोड़ी प्लमिंग नू कोई हाथ ला रहा चेक करो, लाइसेंस ने, इंश्योर्ड ने, WSIB कवर्ड ने, प्लमिंग कोई मजाक नहीं, एक रॉन्ग फिटिंग, एक लूस लाइन ते मिंटा विच फ्लड, वाटर डैमेज, मोल्ड वर्गियां चीजा हो सकदियां ने। जेसीज प्लमिंग लाइसेंस्ड मास्टर प्लमर्स, फुली इंश्योर्ड अते WSIB कवर्ड ने। कोई भी लीक्स, फॉसेट्स, टॉयलेट्स, कोई हॉट वाटर नहीं आ रहा, ब्लॉक्ड ड्रेन्स ने, रेजिडेंशियल या commercial, fast, clean, honest at the professional service, Jesse's Plumbing, 647-969-1298, 647-969-1298, Jesse's Plumbing.
4: GS होम इंप्रूवमेंट वालों एक वेरी गुड न्यूज, हुण तुसी उहनां कोलों वेरी वेरी बेस्ट बीम सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम भी लै सकदे हो। सेंट्रल वैक्यूम $500 तों शुरू हुंदे ने, गराज डोर ओपनर लिफ्ट मास्टर दे $350 तों, फुल गराज डोर $349.99 तों। पिछले 30 सालों तों तुहाडी सेवा विच GS होम इंप्रूवमेंट, एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन बिडे सिस्टम, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, 9057890333, 1098 पिट रॉबर्टसन एट टोरबन, क्रोल बाग प्लाजा, 905-799-0333।
3: पंजाबी लहरा या चलो AM 530 नू दुनिया दे किसी भी कोने दे विच सुनन दे लई अज ही डाउनलोड करो पंजाबी लहरा दी ऐप अपने एप्पल या एंड्रॉइड फोन ते। PUNJABILEHRAN पंजाबी लहरा दी ऐप अज ही डाउनलोड करो।
5: ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਸਲਾਹ, ਛੇਤੀ ਬਣੂ ਕੰਮ, ਕਾਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਤੇਜੀ ਐਟ 416-317-3487 ਟੂਡੇ। ਯੋਰ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਡਨ। ਮੁਨੀਸ਼ ਤੇਜੀ, 416-317-3487, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸ 10039।
6: ਓ ਰੋਕੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ?

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठदे ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
3: S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
1: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट यहां पहुंचो 10970 ब्रैमली रोड वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री चना

0: स्पेशल देखने के लिए आपको ऑप्टिकल डॉट सी ए में चाहिए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 का कॉल कीजिए 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: Since I've seen this, it's 9 now.
2: We didn't have good things here. When COVID happened,
1: you got them.
2: Everyone had a rock.
3: You can now make things in your backyard that you couldn't get.
1: Of Nantes, a broader dot samosa and sweet factory at all leading grocery stores.

अनेक पाव पाती चौदह कदम नाही, एक बात सुनता की होता साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया, संती मन दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया। जीत ले ओए महाबिखारी सहज सोहेली बारी, कहो नानक मन पाया परगासा।

मंगल कल्याण सहायकम सबके चरण निहारया राधन हार राखियो पारे सतगुण दाम उतारया उबरे सतगुर की शरणाई जाति सेव न फिरती जाई रहा कर मह सुख बाहर पुरसू का।

श्लोक सपना से कब अपना कृपा धारी आज पहर अनाथ स्वामी पूरण काल हमारी हर जियो तो

रम्या सब संसार उबारिया पाता प्रभ कृपा धारी अपना बिरत समारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद मुर्गाओ मन तन देह सुखाली रहाओ पत उदाहरण सतगुरु मेरा मह किसका परवा

संसार अपने जिए जंत आपे राखी जमहे कियो हटतार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है पाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सनी उबरे पाई

आइए पाई मन तन शीतल हो संत हो हर हर नाम तिहाई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुरु पूरा नाम गवाया अपनी कृपा धारी पात्र हम प्रभु भय दयाला।

0: कार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
1: सूर्य कवच
2: अस्य श्री आदित्यवचसोत्र महामुद्रस्य स्थितवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्नः यो देवता ह्रीं सूरुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् महादित्यप्रसाद सिद्ध्यते सोत्रमन्त्रम् जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्

नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तांडो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

का जग संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को पूर्णिमा है, तो सब पहले तो अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया, और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैग, यार्ड में बाजू की चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इस मॉडल रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उनका जो दूसरी लोकेशन गोल्फ में, आप उनके स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा, अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और उनका आप नंबर लिख लीजिए 416-524-7004 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं HK मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए गो रोड पर मौजूद है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 मिसिसागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0000 प्रतिनिधा पर कॉल कर सकते हो, 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

0: ट्रिप जाते नहीं लगी आसवाद दानेला समोसा फैक्ट्री
1: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड पर शुरू ने पिसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे आते विश्वास कारण असी लेके आया कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 10 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गुन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1135
2: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर के सामने।

कहा भोली कटले हीरो की कहा गाते हैं रांझे कहा गाते हैं रांझे मस्ती में मस्ती है धूम में मस्ती में।

0: यहाँ का सावन बालों में खिलती है कलियां डालों में।
1: ये जो गाना है विजयंती माला 1957 नया दौर फिल्म थी उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया से गाना है, लेट्स गो रूबा।

भाषा भारत दिखलाई का भारत तो यूं चांद जाना मिलता धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जब करा अपना भारत वो भारत है नीचे संसार चला संसार चला और बढ़ा जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान का

था तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकार में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली अच्छा किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो है दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वही है हमारा भारत, समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोग अगर ये गाना लता जी का नाम बल्ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चलती चला तेरे पानी सुरवत का पला। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

मेरा काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोए करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हां तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इम्प्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉट सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: रियल एस्टेट दी दुनिया विचाओ, अपने सुपनिया नु सच कर वखाओ। फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ।
3: रियल एस्टेट दी बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ।
2: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने।
3: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
2: 905-671-2000।
3: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनिया नु सच कर दिखाओ।
4: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट नो सीज या फ्रीज कर सकते हैं। तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल DCAF
5: 905-908-2499 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca। सम कंडीशंस अप्लाई।
1: हेलो ब्रो, किथे है तू?
6: मैं क्लाइंट नो मिलन जा रहा हूं, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
1: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया। हुन तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नु। प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एम्बियंस। बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
6: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन। मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुने कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600।
7: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
8: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
9: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स। 905-451-2600 905-455-2600।
10: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
11: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
12: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
13: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
14: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नो ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
15: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी, सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
16: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountnash and Boveda intersection, या विजिट करो www.tawakitchen.ca। 905-790-1699 905-790-1699।

0: चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं।
1: हैं? फिर कॉकरोच ते चूहे? वो हाले महीना पहला तो ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरे पहला ही कहा सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो। हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं तां कहना घर ही वेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना? चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो। जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
3: बस करो, कदों तक इस किराए दे छोटे जिहे घर च रहांगे?
4: ओए बस, मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नूं कॉल करन तक।
5: तुसीं सेल्फ एम्प्लॉयड हो? फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
6: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो? तो मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नूं जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बांह, तो मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना।
5: या कॉल करो 647-294-5503।
6: भरोसे अते विश्वास वाला नाम नरदेव।

आदाब, नमस्कार, प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निया जी, अज तां बड़ी मौसम खराब है, तुसी बाहर हैगे हो तो बड़े ध्यान ना, ते अगर जरूरत नहीं है तो ड्राइव ना करो। सो ये सुनेहा तां करके पहले दिता कि अगर इन केस तुसी हुणे सोच रहे सी कि गड्डी चक्कीए किधर चलीए, तो प्लीज़ ना ड्राइव करो, क्योंकि अज बहुत ज़्यादा मीह पै रहा, तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट है।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का एक बार फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर लिए चलते हैं आपको सुखनवरी की दुनिया में, जिसमें आपको मुसर्रत के साथ कुछ भूली बिसरी यादों को तरोताजा करने के लिए चंद आशार के साथ साथ गजलों का भी लुत्फ मिलेगा। प्रोग्राम कहकशां में। आजमाने से कोई अपना नहीं रहता, देर तलक किसी आईने में कोई चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से जब भी मिलना फासला कायम रखना, दरिया जब मिले समंदर से तो फिर दरिया नहीं रहता, देर तक किसी आईने में कोई चेहरा नहीं रहता। बात आईने की चली है तो आईने में हर इंसान को बाहरी खूबसूरती तो दिखाई देती ही है, मगर अंदर की बुराइयों को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी ही गजल आपकी नजर, आवाज जगजीत सिंह की।

आंखों में है इकरार तो इनकार है लपर, उस शोख की देखी है हया और तरह की, जब दर्द मेरे दिल में नहीं है और तरह का, ऐ चारा अगर क्यों है दवा और तरह की। जिक्र दर्द दिल का चलने लगा है तो ये दर्द ना तो आंखों से बाया होता है और ना ही लिखने से, हाँ मगर जुबां कभी कभार बयां कर देती है, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज में इस गजल को कुछ यूं कहा है।

दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, कोई जिस दर्द का चारा नहीं है, गिला हम क्या करें तेरी जफा का, मोहब्बत में गिला होता नहीं है। बात फिर दर्द की चली है तो दर्द दिल के टूटने पर होता है, जैसे फूल को टूटने पर होता है। फूल या तो खुशी को बयां करते हैं और कुछ फूलों के रंग दर्द को। कुछ ऐसा ही अर्ज किया है गुलाम अली ने अपनी इस उमदा गजल में।